0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM ईशान अमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: Game on!
1: මුදිකෙ මෙගර්ඩ්ස් දිවිහෙෆෙම මෙගඩික කුරියා මිගෙන් දා ගේමොන් මිෂෝග මි හෆ්තාග ශොහමෙන්නකො බෑවරි මිවණි දාදි ෆහුන් ඩාක්රේන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ටු රිලීස් කුරි මගේ බීටුගෙ වෙඩින් ගේ ලීඩ් ඇක්ට්‍රස් රායා
2: යස්
1: රායා ෆහ කොල්ලා ෆිතිමන්ඩෙන් එංගේ වර බෑරු ෆිල්ම් තකා ෆිල්ම් තකා බේ මෞලූමාත් තකා ෆිල්ම් වර බලමේ තිමන්න දො එහෙමි ම කුඩකො මි රායාගේ නොලෙජ් හොරි මින් වර බලාලම් මෙවලෙනි
3: Beat the buzzer. Beat the buzzer.
1: मैं यार बाज़ार है बेट कॉल लम मिज़े नहीं फ़ेन ऐ दो एम मिनट के वागो तो नहीं टाइमर सेट को फ़ेन हो दो फ़ेन ऐ दो यागी माकरे नहीं देने दो शो ओके मैं यार कॉल लेते हैं वे कम किशा हो देना दायरा है दिनी मराया भी हम ऐ दायरा अंगन बै वरु जवाब दे मिसाल का शो में बुने अने सलमान खान के फिल्म तक किया शे उन्हें बीवी नंबर वन मैंने प्यार क्यों किया नी मैंने प्यार किया एक बुने एक दिन मिसाल है एंगी जतों में बुने चे मैं मिसाल का मी शरफ के हुरिया फिल्म तक किया शे मीश को मी बीवी ये गोतां हम अन्न हुरिया जवाब किया जे एक ओल्ला दें वे कम की एमे मी वरा दावा कॉफिन तति मन फिल्म बालम है एमे मताई यार दो तैयार वेजे या मिहा हिसाब हूं मैं राया मैं फुरत में इसमें कोलंग ऐसा फाहा कोल ले फिर तीमर ना बाला में मैं मीवे नहीं मी है के फिल्म में हमें मैं मी हाँ के फिल्म तक किया मैं वाले ने हवाल कोल ला शाहरुख खान के फिल्म तक किया गए मैं
2: ओम शांति ओम डिटेल जगह वाले ना तो दें अरे डॉन दिल वाले हैप्पी न्यू ईयर कुछ कुछ होता है
1: जवान फिल्म शाहरुख खान को दिमाग एक्सप्रेस फिल्म शाहरुख खान के फिल्म तर बला कम फाहफी
2: शाहरुख खान के फिल्म तब बलम फेशी वाकी इरेन्ने के बुना के कम में फुरता में बैठे कुछ कुछ होता है
1: कौन फिल्म में बाले हैं तेरे शाहरुख खान में मोड़ मी है के
2: ओम शांति
1: ओम शांति
2: तुम भी हर उस बालों वाले गीना हम बाला फिल्म में गए हम आई हैव लॉस्ट काउंट हम
1: यार ओम शांति ओम आप बेको तुम कौन में सवाल करे इस राय हैं गए नहीं थे बने
2: Let's try the.
1: एका मस्कते आवाज पूरा करनूर में मैं अने बेरु के मैं फिल्म में दायर हैं फाहा को ले फरनानु के तेरे के शाहरुख के बही मैंने देंगे कौन फरनानु ने राय हैं मैं काम उधर नहीं
2: दीपिका दें
1: दीपिका एकन इतुरे विस फरनाने दें शाहरुख का दीपिका या एकन
2: दें लाइक फेवरेट है बने मैंने शाहरुख का दीपिका या दें अर्निंग है वैसा मकाम उधर मैं हूँ दीपे अर्निंग है
1: बोर्ड कम कौन कहा फिल्म तक बनी लोबी के फिल्म तक बनू ड्रामा
2: लोबी ड्रामा
1: एक्शन
2: एक्शन ओके डॉक्यूमेंट्रीस
1: ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತ
2: ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಮೇನೆ ಅಜ್ಜ வரக்கூடாது சொல்ற பலங்க சகேச்சஸ் அண்ட் தென் மிஹாரு லெட்ஸ் சே அஸ்ஸதென் ஹொரிஹா ஃபில்மக வஸ் வர மொழு எக்கமக்கு அண்ட் எம்மே கமகோசுகே அணிங்கம் பெலிஃபைனி ஐயங்கினி லீனா லீனா எ ஃபில்ம் வர வர ரீதி அஸ்ஸகே
1: தென் ஷரஃபா இஷ்ஃபான்கே கோம் ஃபில்ம் இஷ்ஃபான்கே மிஹாதெங்கே ஃபில்ம் லிலிதா
2: லிலி எஸ் தென் ஷரஃப்கே அண்ட் ஹிந்து கோளே
1: ஹிந்து கோளேங்க மெரியதி ஓகே தஃபாத்து ஜவாப் இங்கே வர மீ ராகோ தேங்க மீ கோஹெண்ணு ராயாக கமுதா ஃபண்டானு நாய கமுதா ஃபிலிம் தத்தா திஃபா கொல்லி ஹெமே மீ நங்கியாலின் தா ஹத்தரு ஃபஸ்ட் ஃபண்டானுங்க இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபண்டானுங்க தெரியும் கொம்சே ஃபண்டானுங்க இல்லை வஜாமா ஷரஃப் அஸ்ஸ
2: ஷாருக் தீபிகா இஷ்வான் இஷ்வான்
1: இஷ்வான்